0: हांगार
1: अंगार दो में दुर कोरी इकार गड़ फन रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूं आदि बुद्ध दो होकेरे में दम बार गड़ तेरी हूं
0: हांगार
2: हमें कन दिवे ही राज्य क्या डूं कामिया पिया फारे वेरे कवाम बेनुं ता कामिया पिया फारे वेरिंगा तुम इरुशाद हो दम बेनुं ता व्यवहार फुरां कुरम बेनुं ता
1: गुण दंकार
3: कम में होने हीर दोहे के हिंदु नो नो गिट फन्ना रहेगा रिपीट होने हीर दोहे के हावीरो हाथरु गिट फन्ना रहेगा आदि आदित्य दोहे के हावीरो हाथरु गिट फन्ना रहेगा
1: इंगा सतर से एक साढ़े नौ एक किलो हर्ट्स मीडियम वेव अड्डी नौ मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
3: हम एक नहीं दिवे ही राज्य के आडू
4: दुव्वा चे गिन का उम्मा को हो रस नुकरे फदा दत्ता तिहरी
5: आ कोको
4: दत्ता आधे मंड मंड मशाएक बालागे गन्नच्चे दत्ता मिहारु मिहुरस कुरे उनींगे
5: ती हाद रंगाल कुंटे के पर बड़ाल शुक्रिया
4: मारु हबा
1: कोम्मे उमुरका
6: कोम्मे फांतियका
1: कोम्मे गिंतियका दिवे ही राज्येगे अडु इंहा सतरसे के साढ़े स्नोए किलोहर्ट्स मीडियम वेव
6: अड्डी हनोए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
7: गाड़ींग हेंदुनो दिह गड़ी 30 मिनट में दिवे ही राज्य गाड़ो

0: अमीश, हाथ अमीर जो है केमी
1: जना मेरवा ने तनुंगे न को मेच बस एहे बेतनु में के नहीं बस
0: हमारा गलत तिबुनी ए याबतु बस आने वारत दाही वातने एकमको आगु बुड़ कम नो देवे ने
1: आरे बुना में नो आगु के वाह करन तक काशे आरे मुट्टा जना पे एनुं तनकुं जना कारनी ओके
0: ओके लव
1: ऐतरह नुगा सोड़ को लागें इच्छा ही केनिस के मिको तस सैबोले मा मासाड़ी एनु
0: आ मिशकी मिटेरस वारंग ही क्या मु माँ गस्ता होगे तेरे का मिशा आगे का मिको तब वागुत कोलेंगे इधर को लोमा कीवस आधा साली का मिके
1: वेट फिरका लूँगी कोलेनी वागनु तक कच्चे ना कारना हेलो हामद
2: देवनीता
1: हाँ मेरी होटल का अरे गोड़ा लो माने तो देवनीमा मैसेज कॉल लगे मेरंगले नू

0: अले नूना गए अले दिंगी ने घाटानी खा कुता अले अले करने के दिंग घाटाने को दे बिस्ताना अले मुया बेदाने
1: मिश मिश प्लीज यार हाँ मजे ही दबा मिश एमी आपको हो दाना गाने मिमुनी ने हो दाना में मिश रीति को हम जी ही लागे मुरे
0: कीने ता हो दानी कीने ता जाना या बबीस ने ता ए फोटो हम ता हमें हिंगा चाहिया अरे दोस्ती है ऐ साबु माय लाइफ इज ओवर होरी आका में निमुनी येरु अरे मागु मतिवाने अरे मिके मिस ने रेने हम यागी हम तो गुदीरी उड़ मुंबे सारे बेर कुराने का अन्ना करनुआने नो नो नो नो एम बच्चे या अरे के पापा पापा अरे मारा अने जाना जाना अरे जाना अरे दिक्की ने घाटा अने कुंता को घर पैसा हो दानी इल्ला का रुफिया की ने घर मो दानी इकुड़ा नहीं करनी के
1: ये नहीं नो हम दे गुड़ने
0: की वे बाए गुड़ने अनेका हम दा फोटो फोनू ही पा
1: तेरे नो इस बुने मिशका
0: और नो अनेका नुके रे ने फोनू ना गा कब इस अने जाना दिन किने ताहदा नहीं दिन दिन किने ताहदम भी बुने पड़ जाना किने ताहदम भी
1: निशान नका आन नका विस नेगी आन नका विस नुविस ने मिगड़ी का हदा अने गोते
0: मर गोरे नगर ना हेलो
2: हाय मिस की कॉल लेनी थी
0: अरे कम नुकुरा हम तो कोंका में ती कुरा बनी
2: कोंका में कुरा बनी है मिस की ने घर ना ती वाह कर दगनी की द ती गोता ती वाह कर दगनी की ने वी मिस ने का
0: कामें नोवे मी हसलो ए वी को तकी निधि फोवे ती गुड़ी एहम्बे बानु अनेंगी क्या वी को ते देम में मी हेली यदि
2: एहम्ता एहम्बी ओके मी गुड़ी वाह के बुढ़म वेगने
0: कौन वाह के
2: मेरे माध्यान में बुढ़म वेगने आज तो मी गुड़ी
0: की वे मेरे अन्ने नी
2: की वे आधा रहीं घर स्वास्थ्य कुरी
0: अब हम तो बोनी में नो हफ्ता है वाले आते में भी फास्टो अस्तो
2: ये वी को तो की दिल्ली के बाबा में सेशन कैंसल हुई कोरिंग में को तुम भी या बेंगलुरु मेरे दानी दिल्ली या एक अमुक अगं कैंसल हुई मा आहार मिनी में हम अमीरे मारे था रागलन नो आहार की कुरी विवाह कपड़े में मिश्वरं फावाने कमा एक अमुक शोके चुन हुआ हीवनी आहार ना बेरु नुआ हैं हीवनी मिहार
0: ऐहने नो बुनी में नो निदाफोए फदें में हमी हेले बुनी ऐहम भी मा एहम भी मैं को तवाह का देखो ने आहम तो अन्ना वाह का बोले मुफावे चे वारा मुफावे चे हम ओके ते बाबर नेंगे
2: ओके बाय
1: की के हम तो अन्ना नहीं है
0: आह मेरे अन्ना नहीं हो ते मिस्ते नूरे जाना हुए चे तब बेगम अड़ा रिटी वे पला
1: आह कुमो मगे तबस अवा दबांग इच्छिया लागे अवा दाम भी दो
0: चना मड़ को पला
1: मड़ को क्या वाकन लेते नो आहार इन बितानी अवा आहार इनके सामान दंगे फेंके दा
0: चना आहार बुनम में उड़े नी जाना इंगे बस हेल्प पे वेवे नी ता मैं बुनी ಎಫ್ಎಸ್ವರೆ ದೇವೇಣಿದ ಎಲ್ಲ ಕರುಫಿಯಾ ಹಮಕುರ ಎಬ್ಬ ಜನ ದೇಂಬೇಣಿ
1: ಆಹಾರೇ

0: हांगार
1: अंगार दो मेंदुल कोरी इकार गड़ फन रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूं आदि बुद्ध दो होकेरे मेंदम बार गड़ तेरी हूं
0: हांगार
2: हमें कनी दिवे ही राज्य क्या डूं

ইসলামী শরিয়াতে কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একলাঙ্গে আলুতকুম একলাঙ্গে ফুরিহমগুতুকা আলুবেতিউমটাকা তাবাউমা রুহিওডিগিং খান্ড আলুওয়াফাওয়া মাতিওরি মানহাজু দীনুগে হুকুমতাকা দাউলেন হিঙ্গুমুগে নিজাম এ শরিয়াতুকা ফুরিহমে লাওয়াফাওয়ে শিরুকুগে নুবাকমা জাহালাতুগে আন্দিরকমুগে তেরিয়া ইনসানিয়াতু গরক ওয়ফাওয়ানিকো ইসলামী শরিয়া বাওয়ালেবুনি ইনসানিয়ত বেনুয়া আদি এম্মে ফায়দা হুরি হুরিহা কমকাগেন এই ইনসানি হায়াতুগে হুরিহা দায়রায়ে শামিলওয়া গতুগে মতিন বাওয়ালে বিফাওয়া শরিয়াতে ইসলাম দিন বাওয়ালে বুনু ইরু ইনসানিয়তুগে হালত অতি কম ফদেকত ইসনালেন জেহে দরিন ম্যাম ফদ মিহুন্না খায়বেন কুরে নিকমেতিম ওয়ানি আনিয়া বিরিংগে ছাবু কুতকুগে দরুগা ಹಗ್ಗ ಕೀ ಕೊಂ ಎಚ್ಚಿಕ್ಕನ್ ದನ್ನಣಿ ಮದುಬೈ ಆದುಲು ಇನ್ಸಾಫೆನ್ನೆ ಲೇ ಹೊರುವುಮ ಮೀಹುಂಗೆ ಮುದಾತ ನು ಹಗ್ಗುಂ ಕೆವುಮ ಖಿಯಾನೆಂ ಒತಿ ಇಂತಿಹಾಯ ಫಿತುರಿಫ ಅಂಹೆಂದರಿಂ ದಿರಿತಿಬ್ಬಾ ವಳ್ಳ ಅಂಹೆನುಂಗೆ ಹಗ್ಗುತಕ ಕೀ ಒಯ್ ಎಚ್ಚನ್ನು ಬಂಗುರಾಯಿ ಕೀ ಎಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾಂ ಎಕ್ವಿರಿಯ ಜಿನೇ ಕುರುಮ ಫಾಹಿಷ್ ಕಂತತ್ತಕುಂ ಮುಜ್ತಮಾತಂ ಒತಿ ಗುಗುಮಾಲಾಫ ದೀಲತಿಕಮ ವಾದ ವಫಾತಿರುವುಮ ಗೆಫುಳಂ ಅನ್ನ ಮೀಹುನ್ನ ಫೆಂದಿರುಮ ಮಿಫದ ಮಧು ರೀತಿ ಆದತಕೆ ಮೆನುವಿನೆ ಮ್ಯಾವಿಗಿಂವ ಕಹಬಾಗ ಇತ ಸತೇಕ ಬುದು ಬೆಹೆಟ್ಟಿಫಾಹುರಿ ದುನಿಯ ಒತಿ ಇಸ್ಲಾಹಿ ಇಂಗಿಲಾಬಕ ಬೇನು ವೆಫ ತೆದುವೆರಿ ಮುಸ್ಲಿಹಕ ಎದಿ ಎದಿ